0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को

न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न

0: लोगों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांड

0: शहरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ, श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनिनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
4: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
3: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Our correspondent has the details.
5: The newly operational CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility represents a major milestone in India's journey towards building a self-reliant technology ecosystem. Once fully ramped up, the plant will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. It will offer comprehensive end-to-end packaging and testing services, including wafer sorting, package design and failure analysis. Driven by rapid advancements in artificial intelligence and high-performance computing, computing, the facility in Sanand is designed to meet the global demand for advanced memory and storage solutions. The facility will directly cater to global and domestic customers across critical industries, including automotive, industrial automation, 5G communication, and internet.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार मुंबई 107.1 FM रेनबो आकाशवाणी मुंबई, आपकी दोस्त माला आपके साथ जुड़ गई है शनिवार की इस खास सुबह में। और हमारा और आपका पसंदीदा शो है मस्त मुंबई। और आज 4 जुलाई की इस भीगी भीगी सी सुबह में खिड़की के बाहर गिरती बारिश की बूंदों के बीच दिल एक अजीब सी कशिश महसूस कर रहा है। आज दिल चाहता है कि कुछ पन्ने पलटे जाएं उस अजीम शख्सियत के नाम जिसने हमारे जज्बातों को शब्द दिए, जिसने सिखाया कि दिल का फसाना आखिर सुरों में बयां कैसे होता है। तो आज मस्त मुंबई दिल का फसाना में हम सफर करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे गीतकार की जिंदगी के गलियारों में जिनका साहित्य बेहद गहरा था और जिनकी सादगी सीधे रूह को छू जाती थी। चलिए इस साहित्यिक और भावुक सफर की शुरुआत करते हैं 80 के इस खूबसूरत नगमे के साथ। इस गाने को सुनकर अंदाजा लगाइए कि हम किसके बारे में आज आपसे बात करने जा रहे हैं।

तो भाई आपकी भी ये ख्वाहिश कभी पूरी हुई है कि कल ही रात को ख्वाब में आई हो और सुबह सुबह उसकी मुलाकात आपसे हो गई हो। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 FM और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1000 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी कि DRM पर भी सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हमें लगातार सुन पा रहे हैं 24/7। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि आप ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें

0: सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना और आज आपकी दोस्त माला जो है दिल का फसाना आपको जरूर बताएगी सुनाएगी उस फनकार का जिनकी महफिल में जब हम जाते हैं तो भाई हम सब कुछ भूल जाते हैं। और ये वो फनकार है जिन्होंने कभी मुफलिसी देखी कभी अपनों की बेरुखी झेली लेकिन जब कलम उठाई तो जमाने को अपना मुरीद बना लिया। कहते हैं कि एक सच्चा शायर या गीतकार वो नहीं जो सिर्फ महलों की बात करे बल्कि वो है जो आम इंसान के दिल के दर्द को उसके अकेलेपन को अपनी स्याही बना ले। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकलकर जब माया नगरी मुंबई की सरजमी पर उन्होंने कदम रखा तो जेब खाली थी लेकिन आंखों में ख्वाबों का एक समंदर था। तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े होने के कारण जेल की हवा भी उन्हें खानी पड़ी क्योंकि प्रोग्रेसिव राइटर थे वो लेकिन उनके तेवर कभी कम नहीं हुए। उन्होंने लिखा था मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आइए उनकी इस जज्बाती और साहित्यिक सोच को सलाम करते हैं और 80 के दशक का एक जादुई गीत और सुनाते हैं। तब तक आप सोचते रहिए किसकी बात हम कर रहे हैं आज मस्त मुंबई दिल का फसाना में साथ जुड़ी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला और आप भी जुड़ गए हैं हमेशा की तरह अपने दिल से हमारे दिल तक लेंगे आपके नाम करेंगे आपकी बातें लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत सा गाना गुम हो जाने के लिए।
1: क्या कहा

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in

0: /NIPP वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: जी हाँ, यह है आपका अपना आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम। शनिवार की खूबसूरत भीगती हुई ये सुबह है और कार्यक्रम है मस्त मुंबई दिल का फसाना। और आपने बिल्कुल सही गेस किया है कि आज हम बात करने वाले हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब के दिल के फसाने पर, उनकी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने गाने लिखे और वो गाने हमारे दिलों पर छा गए। बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं, वो लेंगे ज़रूर। और इसमें सबसे पहला जो मैसेज हमारे पास है वो पंकज महोड़ का पहुंचा है और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और साथ ही साथ वासुदेवन बदलापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश बोहरा ने भी सही जवाब दिया है, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज। अजमेर राजस्थान से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। किशोर नाइक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल से दिल तक जुड़ रहे हैं वो, गणेश पाटिल वाड़वन से। और ये मैसेज उल्लास नगर से कल्पना राजू वारे का हमारे पास आया है। महेश भाटकर सांता क्रूज से जुड़ गए हैं। दीपा पालकर माहिम से, उन्होंने भी सही अंदाजा लगाया कि मजरू सुल्तानपुरी साहब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। विक्रम अठावले साथी विद्या अठावले मिरत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र घटोल अकोला से, और ये मैसेज है शंकर शिरोलकर का डोंबिवली से। तो शिरोलकर जी, आप जो गाना सुनना चाहते हैं वो हम जरूर बजाएंगे, लेकिन वो 10 बजे का कार्यक्रम होगा, जब आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा येशुदास की आवाज में हम आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। फिरोजगन पुरिया भी अपने दोस्तों के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर। प्रमोद चिंचोलकर भी हमें सुन रहे हैं लगातार। अंजू अंधेरी ईस्ट से गुड मॉर्निंग बोल रही है। चाय का प्याला भी इन्होंने हम तक पहुंचा है। बारिशों के मौसम में चाय अगर चलती रहे तो एक अलग ही उसका अपना मजा होता है। और ये मैसेज आया है वंदना सूर्यवंशी का थाने से हमारे पास, गुड मॉर्निंग के साथ नाइस डे भी इन्होंने बोला है। विश्वास चांदोरकर, प्रदीप अनंत कृष्णन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हितेंद्र दास, मंगेश महात्रे भी सुन रहे हैं। और ये मैसेज है वसुधा का देवस्थली से, डोंबिवली से। रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस घंटे में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 9:02 और ठीक 58 सेकेंड यानी कि 9:03 हो चले हैं। कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई दिल का फसाना। और दिल का फसाना आज हम आपसे कह रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब के बारे में। तो उनका एक और नगमा, उनका एक बेहतरीन 90s का नगमा एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

0: तो भाई आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर आप जो है लगातार बने हुए हैं अपनी दोस्त माला के साथ। कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है, दिल का फसाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कि और बातें करें आपके साथ, एक छोटा सा ब्रेक है और उस ब्रेक के उस पार है आपकी दोस्त माला लेकर कार्यक्रम मस्त मुंबई।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए

0: अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: तो भाई आ गई है एक बार फिर आपके साथ आपकी दोस्त माला। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शो है मस्त मुंबई और बात चल रही है दिल के फसाने की, एक ऐसे गीतकार की जिनकी हर बात में गहरा फलसफा छुपा होता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब की। 90 का जो दशक था उसके आते आते जब सिनेमा की भाषा बदल रही थी, तब भी इस फनकार की कलम की धार कम बिल्कुल भी नहीं हुई। उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए भी ऐसे गाने लिखे जो आज भी हमारे दिल के बेहद करीब हैं और हम बड़े प्यार से हम उन्हें सुनते हैं। उनकी खासियत थी कि वो प्यार को सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि एक रूहानी इबादत मानते थे। जब वो लिखते थे तो ऐसा लगता था कि दिल के किसी कोने में छुपा हुआ कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो, या फिर किसी बिछड़े हुए की याद चुपके से सिरहाने आकर आपके बैठ गई हो। तो चलिए 90 के उस दौर में एक बार फिर आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं उनके शब्दों की अदायगी जिसमें एक अलग ही तड़प थी, अलग ही सुकून था।

तो भाई आपकी मोहब्बत जो है वो हमें खींच लाती है स्टूडियो तक, भले ही रेड अलर्ट लगा हुआ हो। आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम है और बारिश का भले ही रेड अलर्ट लगा हो, लेकिन आप जब इतने प्यार से जुड़ते हैं तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं, हमें भी आपसे मिलने आना ही पड़ता है चाहे जो भी हो। और आप ये प्रसारण सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। और अगर आप चाहते हैं कि अपने इलाके के मौसम का हाल हम तक पहुंचाना, तो जल्दी से उठाइए फ़ोन, नंबर नोट कीजिए और बता दीजिए हमें कि भाई बारिश आपके यहाँ पर हो रही है, कैसी हो रही है, कहाँ से आप हमें मैसेज कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। नंबर है 8657661071, यानी कि 8657661071। आपकी दोस्त माला लगातार बनी हुई है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर आपके साथ कार्यक्रम मस्त मुंबई। बारिशों का मौसम वैसे ही बहुत मस्त होता है, उसके बाद आपके मैसेज और आपका साथ तो क्या कहने। तो आज बात हो रही है मजरू सुल्तानपुरी साहब की, और अब हम आपको बताते हैं कि 1965 में एक फिल्म आई थी जब जब फूल खिले, जिसमें शशि कपूर साहब और नंदा जी थे, और इस फिल्म का एक गाना था, उसी गाने का जो एक रीमेक है वो 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में यूज़ किया गया। मूल फिल्म के सारे गाने जो है वो मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था, और जो गाने, ये दो गाने हैं, ये गाने हम आपको सुनाएंगे। थोड़े बहुत उसके बोल जो हैं वो बदले गए, लेकिन समीर साहब ने इस गाने को आगे जाके लिखा राजा हिंदुस्तानी फिल्म के लिए, और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। तो आज का जो मौसम है, इन दो गानों का जो है मर्जर होना बनता है, तो ये दो गाने बैक टू बैक ओनली ऑन आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, कार्यक्रम मस्त मुंबई, दिल का फसाना। और आज हम दिल का फसाना कह रहे हैं आपसे मजरू सुल्तानपुरी साहब का। और वो एक ऐसे लिरिसिस्ट थे जिनकी बातें जो थी, जो बहुत ही रूमानी बातें और रूमानी गाने थे उनके लिखे हुए, उनके खुद के भीतर। वैसे एक अकेला आमतौर पर ऐसा माना जाता है जो लोग दुनिया को बहुत ज़्यादा हंसाते हैं या सबसे खूबसूरत रूमानी गाने देते हैं, उनके खुद के अंदर एक अकेलापन छुपा होता है। और जो हमारे अजीम शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, उनकी डायरी के पन्ने बताते हैं कि वो अक्सर रातों को जाग कर मुंबई की इस खामोशी को निहारा करते थे। और उनका मानना था कि जब तक इंसान खुद तन्हाई से बातें नहीं कर लेता, तब तक वो एक मुकम्मल साहित्य नहीं रच सकता। उन्होंने साहित्य और सिनेमा के बीच जो पुल बनाया, उसकी मिसाल आज के दौर में मिलना थोड़ा ही मुश्किल ही है। उनकी लिखी हर लाइन, हर अंतरा एक पूरी किताब की तरह हुआ करता था। और उसी किताब को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं

कार्यक्रम मस्त मुंबई दिल का फसाना के माध्यम से। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन कुमार मानपुर गया बिहार से, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मानसून अभी पहुंचा नहीं, बारिश का इंतजार है, गर्मी से हालत खराब है। कोई बात नहीं चेतन, आपके यहाँ अभी बारिश जरूर पहुंचेगी। पंकज मोहोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शंकर शिरोलकर जो है अपने घर की खिड़की से बारिश का नजारा जो है उन्होंने हम तक पहुंचाया है, और बता रहे हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है। अजय साकरे इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ। शुभ लक्ष्मी मस्तकार भी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। अंजू अंधेरी ईस्ट से, वो कह रही है कि भाई बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और उसे कार्यक्रम को भी वो एंजॉय कर रही है। विजेंद्र खटोल अकोला से जुड़े हुए हैं। फिरोज सिगनपुरिया जो है वो भी हमें सुन रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। विजेंद्र खटोल कह रहे हैं कि भाई बारिश हमारे यहाँ अकोला में बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम साथ ही साथ आपका कार्यक्रम भी एंजॉय कर रहे हैं। दीपा पालकर कह रही हैं कि विक्रोरी एरिया में है, इधर धुआंधार बारिश हो रही है। तो भाई बारिश का मौसम है तो बारिश धुआंधार तो होगी। प्रमोद चिंचोलकर अकोला से, और शुभदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग शुभदा, कैसी हैं आप? और वो पुणे से हैं, वो कह रही हैं 3 दिन से लगातार बहुत बारिश हो रही है, सुकून भी मिल रहा है, और अब जो है फैन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, पंखा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैसेज हमारे पास पहुँचा है रितेश शेट्टी का मलाड से। और रितेश, आज हम बात कर रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब के बारे में मस्त मुंबई दिल का फसाना में, तो भाई उन्हीं के गाने हम प्ले करेंगे। वासुदेवन भी जुड़ गए हैं बदलापुर से, और वो कह रहे हैं कि लगातार बारिश यहाँ भी हो रही है, रेनी डे भी उन्होंने हमें कहा है। प्रदीप अनंत कृष्णन सुन रहे हैं, श्रीधर मुजारकर, राकेश माथुर पुणे से जुड़ गए हैं, सुरेश काशीनाथ पाटिल और अविनाश दामोदर खडू डिगरे पाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश बोरा तो लगातार बने ही हुए हैं, इब्राहिम भी इंजॉय कर रहे हैं, प्रणव शिंदे भी जुड़ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मजरू के गीतों में चाहत की वो रवानी है, हर लफ्ज में छुपी एक हसीन कहानी है, उन्होंने छुए सुर तो हर दिल धड़क उठा, उनकी कलम में बस सुरों की महारा है। बहुत ही खूबसूरत लाइनें उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं। और अवधेश मौर्य जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह एंजॉय करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ दिल से दिल तक आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। और वो लिसनर्स जो हमें सिर्फ सुन रहे हैं, मैसेज नहीं भी कर रहे हैं, आपका भी दिल से स्वागत है इस घंटे में मस्त मुंबई के। अगला गाना आपके नाम।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है ना। मस्त मुंबई में आज दिल का फसाना सुनते सुनते जो है वो टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। 9:52 और ठीक 21 सेकंड हो चले हैं। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी साहब भले ही आज हमारे पास जिस्मानी तौर पर मौजूद ना हो, लेकिन जब जब रेडियो पर कोई आशिक अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा ना, तब तब कोई तन्हा दिल जब रोएगा और जब कोई जिंदगी के फलसफे को समझने की कोशिश करेगा, तो उनकी शायरी, उनके लिखे गीत हमेशा जिंदा रहेंगे। फनकार मरते नहीं, वो अपने तरानों में अमर हो जाते हैं। आज इस हसीन और जज्बाती सफर को यहीं पर थामने का वक्त है, लेकिन गानों का सिलसिला तो रुकेगा नहीं और आपसे जो है और भी बातें करेंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत में 10:02 पर। और उससे पहले ठीक 10 बजे एक छोटा सा न्यूज ब्रेक होगा, लेकिन उससे पहले आपकी दोस्त माला जो है आपके नाम ले ले, ताकि आप ये ना कहें कि आपने मैसेज किया और हमने आपको याद नहीं किया। सुनील गायकवाड़ जो है वो महाराष्ट्र के पुणे से सुन रहे हैं, साथ में सुषमा राजवीर अनन्या गायकवाड़ भी कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, और विजेंद्र घटोल, दीपा पालकर, शुभदा कार्यक्रम सुनकर उन्हें मजा आ गया और वो एंजॉय कर रही हैं और कह रही हैं कि एफएम रेनबो का साथ हमें बहुत प्यारा है। अजय साकरे, प्रदीप अनंत कृष्णन, और ये मैसेज है मंगेश जोशी का रोहा रायगढ़ से। वो कह रहे हैं कि रोहा में भी बारिश हो रही है, हम 5 बजे से ही सुनते रहते हैं एफएम रेनबो को। और ये मैसेज आदर्श कनौजिया का हमारे पास पहुंचा है, और इसी तरह रजनीकांत पाटिल वाड़वन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए इस घंटे में बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि 10:02 पर आप फिर जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन आप कहीं जाएं नहीं, इसलिए हम आपको छोड़ जा रहे हैं इस प्यारे से नगवे के साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:11। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। IMD के अनुसार आज से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश होने की आशंका है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे

आनंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में और अंतिम 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

स्वागत है आपका आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर कार्यक्रम नमस्ते भारत सुनो सुनो है दुनिया वालों साथ है आपके आपकी दोस्त माला एंजॉय कीजिए ये गाना और करते हैं इसके बाद बातों का सिलसिला शुरू

तो भाई कभी कभी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाती हैं कि आदमी को यही नहीं समझ में आता कि सीधा चलना है कि उल्टा चलना है. जैसा कि ये गाना जिसे खामोशी द म्यूजिकल फिल्म से हमने आपके लिए प्ले किया है कार्यक्रम नमस्ते भारत सुनो सुनो है दुनिया वालों के शुरुआत में. तो भाई 10:08 और ठीक 19 सेकेंड हो चले हैं. 107.1 FM रेनबो है, साथ है आपके आपकी दोस्त माला. और आशा करती हूँ कि आप सुबह जो है आपकी जो सुबह है वो सुरक्षित होगी और खूबसूरत भी होगी. बारिश का मौसम है, थोड़ा संभाल कर घर से बाहर कदम निकालिएगा. और आज की जो थीम है उस पर हम बात करेंगे कि दुनिया को सिर्फ अपनी तरक्की हम नहीं दिखा रहे हैं आजकल, बल्कि अपने देश के लोगों को एक बहुत बड़े खतरे से भी आगाह करने वाले, और वो खतरा है डिजिटल खतरा. क्योंकि आज भारत पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, सब्जी वाले से लेकर मॉल तक सब ऑनलाइन है. लेकिन इसी डिजिटल दुनिया के पीछे कुछ ऐसे मायावी लोग भी छिपे हुए हैं जो आपकी गाढ़ी कमाई पर नजर गड़ाए रहते हैं. जी हाँ, नमस्ते भारत में आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा की, ताकि कोई भी आपको गुमराह ना कर सके. चलिए सचेत रहने और हौसला बनाए रखने के सफर की शुरुआत करते हैं 90 के इस दशक के खूबसूरत नगमे के साथ. इसकी फरमाइश हम तक भेजी है विजेंद्र घटोल ने अकोला से, और उसके बाद जो है हम लेंगे फरमाइश राकेश माथुर की पुणे से. इन दोनों ने जो गाने हम तक पहुंचाए हैं वो सावन की और बारिश की जो है बूंदों को हम तक पहुंचाते हैं. तो ये बूंदें हम पहुंचा रहे हैं आप तक.

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

वैसे बारिश का आना हम सबको मुबारक जैसा ही होता है, क्योंकि बारिशें होती हैं तो मौसम भी बदल जाता है, दिल का हाल भी बदल जाता है और पानी का भी इंतजाम हो जाता है। नमस्ते भारत और सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, आज हम बातें कर रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल फ्रॉड्स हमारे साथ होते हैं लगातार, किस तरह से डिजिटल दुनिया के पीछे कुछ मायावी लोग छिपे होते हैं जो हमारी गाड़ी कमाई पर नजर बनाए रहते हैं। तो इस साइबर फ्रॉड और डिजिटल सुरक्षा की आज हम आपसे बात कर रहे हैं नमस्ते भारत में। और 10:20 और ठीक 57 सेकेंड हो चले हैं और कान खोल कर थोड़ा सा सुनिए कि अक्सर आपके फोन से एक घंटी बजती है, बधाई हो आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है, या फिर सर आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, जल्दी से अपना ओटीपी बताइए। हमारे सीधे साधे लोग जो हैं, जो ये मैसेज सुनते हैं या पढ़ते हैं, खासकर घर के बुजुर्ग, इन शातिर लोगों के झांसे में आमतौर पर आ जाते हैं। और वैसे लिटरेचर हमें ये सिखाती है कि लालच और डर इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आज इस रेडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी बैंक आपसे फ़ोन पर कभी भी कोई पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगता है, तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी डिजिटल चाबी किसी के हाथ में बिल्कुल भी मत सौंपिए। और आइए खुद को इस धोखे से दूर करने के लिए संकल्प लेते हैं और आपको सुनाते हैं इनकी पसंद का गाना। और ये इन है दीपा पालकर, दीपा पालकर की पसंद का गाना हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ गाना प्ले करेंगे प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे की फरमाइश पर गुप्त फिल्म का गाना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 जुलाई 1997 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और 29 साल इस फिल्म के पूरे हो गए हैं। और इस फिल्म ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे, एक अवार्ड बेस्ट विलन का जो था वो काजोल को मिला था नेगेटिव रोल करने के लिए, और वो पहला ऐसा अवार्ड था जो उन्हें नेगेटिव रोल करने के लिए मिला था। और आप हमारे साथ नेगेटिव नहीं, बिल्कुल पॉजिटिवली चल रहे हैं लगातार FM रेनबो 107.1 FM पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी, न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हमें लगातार सुन रहे हैं 24/7। दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, आप जुड़े हुए हैं अपनी दोस्त माला के साथ नमस्ते भारत में। तो दीपा पालकर आपकी पसंद का गाना नमक हलाल फिल्म से।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

वैसे आजकल हम अपनी हर छोटी बड़ी जो खुशी है वो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, और साथ ही साथ कई सारे जो हैं उसके टैग्स भी लगा देते हैं, फीलिंग हैप्पी एट मुंबई एयरपोर्ट या फ्री टाइम एट होम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें कुछ गलत इरादे रखने वाले लोगों को न्योता भी दे देती हैं? अपनी प्राइवेसी यानी अपनी निजता को संभाल कर रखना भी एक आर्ट है। वैसे हमने आज सुबह मस्त मुंबई मजरू साहब की बात की थी, उन्होंने भी लिखा था कि हज़ार राहें मुड़ के देखी लेकिन आज डिजिटल दुनिया में हमें सही राह चुननी होगी। अपनी निजी जानकारी, अपनी तस्वीरें अजनबियों से साझा नहीं करनी चाहिए, समझदार बनना चाहिए, सुरक्षित भी रहना चाहिए। और इस सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए हमें साइबर क्राइम से बचते रहना चाहिए। 10:36 और ठीक 57 सेकंड हो चले हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। ढेरों मैसेजेस हम तक पहुँच चुके हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा है

कि किसकी पसंद का गाना हम बजा दें, लेकिन आप सभी के नाम तो जरूर ले लेंगे। कल्पना राजू वारे उल्लासनगर से हमारे साथ जुड़ी है, महेश बोहरा अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं और गाना भी वो सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का। वहीं फिरोज सिगनपुरिया जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना अपने ग्रुप के साथ सुनना चाहते हैं, हम ज़रूर प्ले करेंगे। प्रमोद चंचोलकर और ये जो गाना सुनना चाहते हैं वो गाना बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, तो ये गाना हम आपके लिए प्ले करते हैं और सबके नाम ले लेते हैं। बाबा दादर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये मैसेज किसका है, संगमित्रा का मैसेज हमसे आया है हमारे पास। प्रकाश शिंदे भी हमें सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई अंधेरी पश्चिम में पानी जो है वो भर गया है और बारिश का बुरा हाल है, लेकिन बुरा हाल नहीं, हम तो इसे अच्छा ही कहेंगे क्योंकि बारिश थोड़ा देर से भले ही आई है लेकिन जम कर आई है। शुभ लक्ष्मी वस्तकार भी हमें सुन रही है शुभदा, वो भी इंजॉय करिए बारिश को और खूबसूरत नगमों को FM रेनबो के साथ रजनीकांत पाटिल वाडवन से। और ये मैसेज हमारे पास आया है नूरत राम सुवासिया, मुकेश सुवासिया, विष्णु सुवासिया, गांव रियाबड़ी, जिला नागौर, राजस्थान से, और वो कह रहे हैं कि चलने लगी हैं हवाएं, तो वाकई में चलने लगी हैं। श्री राय राउत, मिलेश राउत और आर्य मिलेश गजानन राउत टिगरेपाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श कन्नौजिया भी हमें सुन रहे हैं, विजेंद्र घटोल, राकेश माथुर, शंकर शिरोलकर डोंबीवली से हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेजेस और भी आते जा रहे हैं, ज्योति घटोल अकोला से, प्रमोद चंचोलकर और गणेश पाटिल वाडवन से। ये मैसेज ओंकार काटकर का हम तक पहुँचा है, उनकी पसंद का गाना भी हम प्ले करेंगे, लेकिन ये गाना जो हम प्ले कर रहे हैं ये आप सभी बारिश के मारों के लिए है जो बारिश से जुड़े हुए गाने हमारे साथ FM रेनबो पर इस वक्त सुनना चाहते हैं। तो ये गाना अल्टीमेट क्लासिक सॉन्ग है जिसे सुनकर आप एंजॉय कर सकते हैं बारिश के इन खूबसूरत लम्हों को।

तो भाई आजकल जो फोन्स है उसे देखकर बच्चों और युवाओं का मन बिल्कुल ऐसे ही करता है कि उसे देखने के बाद उसे छोड़कर कहाँ जाएं और उसी के साथ ही रह जाएं, ऐसा ही फीलिंग जो है आजकल आता है बच्चों को और युवाओं को, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है वो इतना बढ़ गया है कि आज बच्चे मैदानों में कम और मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। गेमिंग फ्रॉड और ऑनलाइन बुलिंग जैसी चीज़ें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। माता पिता होने के नाते सभी का ये फ़र्ज़ है कि उनके डिजिटल दोस्त हम बन जाएं और उन पर नज़र रखें, लेकिन प्यार से। तकनीक का इस्तेमाल प्रगति के लिए हो, बर्बादी के लिए नहीं। और वैसे भी अगर आनंद बख्शी साहब के शब्दों में कहें तो जीवन का असली संगीत अपनों के साथ बैठकर बातें करने में है, स्क्रीन के पीछे छिपने में क्या मज़ा। तो भाई सुनाते हैं इसी बात पर दो लोगों के गाने जो हम तक पहुंचाए हैं पंकज महोड़ ने, और ये जो गाना है ये हमारे पास पहुंचाया है किसने, ये हम आपको बाद में बताएंगे, नाम हम भूल गए।

तो भाई आज के गानों से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका दिल तो भर ही गया होगा, और अब जो वक्त है वो है आपसे इजाजत लेने का आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो से। लेकिन सफर थामे इससे पहले जाते जाते सबसे काम की बात, अगर भगवान ना करे कि आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो घबराइए मत, तुरंत 1930 यानी कि 1930 नंबर पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। और याद रखिए कि सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और आज सुनो सुनो है दुनिया वालों के जरिए हमने जो जागरूकता की बात आपसे की है उसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपने पड़ोसी और दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा। वैसे भी आजकल हम बहुत चीज़ें शेयर करने लगे हैं ऑनलाइन वर्चुअल मीडिया के माध्यम से। फिर मुलाकात तो जरूर होगी ही आपके साथ FM रेनबो 107.1 FM पर। मुझे इजाजत तो दीजिए, लेकिन आपको मेरे कार्यक्रम मेरा गाने कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं fmrainbow.hindi25@gmail.com पर। अपनी दोस्त माला के नाम लिखिए लेटर और बताइए कि कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए FM रेनबो 107.1 FM के साथ। आपको छोड़ जा रही हूँ एक और खूबसूरत बारिश से जुड़े हुए नगमे के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि ये गाना भी आपके दिलों तक पहुँचेगा माला के दिल से।

0: ए मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

नमस्कार, ये FM रेनबो चैनल है आकाशवाणी का। प्रस्तुत है इस वक्त के मुख्य समाचार। मौसम विभाग के अनुसार आज से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका की गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज

कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक साबित हुआ है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन ट्रायल में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। इसमें कहा गया है कि माइलेज पर ईंधन के प्रकार के अलावा कई और चीजों का भी असर पड़ता है। खेल समाचारों में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने ने रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिडर नेविच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर के अन्य मैचों में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी येनिक सिनर ने अमेरिका के जेनसन ब्रूक्सबी को हराया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे के जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

यह कार्यक्रम है ब्रेक फ्री और आप है मेरे यानी आरजे अनीता के साथ। और शुरुआत हमने की बदरा की को आहट की आहट से और उसे आवाज देते हुए, और इसी को जारी रखेंगे ब्रेक फ्री में, क्योंकि मौसम ने दस्तक दी है यानी बारिश ने दस्तक दी है और बदरा न जाने कहां से आ गया है, और अब आ गया है तो जाने का नाम नहीं लेता है ना।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

यह ब्रेक फ्री में आज आप मेरे यानी आरजे अनीता के साथ है और एक के बाद एक बद्रा के गीत मैं आपको सुनवा रही हूं। और अब सुनते हैं मदन मोहन की ये रचना, अमर रचना, राग भीम पलासी पर आधारित, जिसमें नैनों में फिर से बद्रा छाया हुआ है।

जी हाँ, पहले हम कह रहे थे कि बारिश आ ही नहीं रही है, पता नहीं इस बार क्यों रूठ गई, और अब आई है तो ऐसी झमाझम कि अब शायद थोड़ा सा लोगों को लगने लगा है कि कब थोड़ी सी राहत मिलेगी, सूरज कब निकल आएगा। क्यों, क्या आपकी भी कैफियत कुछ ऐसी ही है? तो हमें जरूर मैसेज करके बताइए, और फिलहाल सुनिए एक और गीत रिमझिम का।

कार्यक्रम ब्रेक फ्री आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनीता के साथ। कुछ बदरा के गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ और जैसा कि मैंने कहा अब कुछ कुछ लगने लगा है कि सूर्य देवता के दर्शन कब होंगे, लेकिन ये जनाब कह रहे हैं कि सावन को आने दो, डर किसको है, क्योंकि मैं आपको गीतों में ढालूंगा और हम भी तो यही कर रहे हैं, है ना। तो ये है फिल्म सावन को आने दो का टाइटल ट्रैक और जैसा कि आप जानते हैं हर शनिवार को 11:30 बजे से लेकर करीबन 11:48 तक होता है कार्यक्रम स्टम्प्ड, जो रिले होता है हमारी दिल्ली केंद्र से। तो 11:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम स्टम्प्ड और फिर 11:48 पर मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक आनंद लीजिए इस गीत का।

स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे अनीता को। और जैसे ही बातें हो रही थी बारिश की, बरखा की, बदरा की, और न जाने कौन से संदेश लेके आता है ये। और आखिरकार हमारे जो कुछ दोस्त हैं जो मरुभूमि में रहते हैं यानी राजस्थान में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब भी उन्हें बारिश का इंतजार है। जी हाँ, ये कहिए भारत की विविधता का एक रंग है शायद कि आप अलग अलग प्रांतों में रहते हैं तो बारिश जो है दस्तक अलग अलग तारीखों पर देती है। और ऐसा ही शायद एक गीत जो है इसी प्रांत का, जहां पर बारिश के आने की खुशियां मनाई जा रही हैं। तो लीजिए सुनिए फिल्म पहेली का ये गीत।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

तो ये थे गीत आज के ब्रेक फ्री के, और बातचीत भी हुई और बारिश भी, फुहारे भी। तो आखिरी गीत जो है वो भी घटा के छाने की बात कर रही है, और मैं छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ। 12 बजे होंगे समाचार, और उसके बाद आप सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, जहां पर भी गीतों की बौछार होने वाली है। तो तैयार रहिएगा मेरे साथ, निकल पड़िए एक और सुहावने भीगे भीगे सफर पर। लेकिन तब तक ये गीत आपके लिए।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है इस वक्त के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। वरिष्ठ ईरानी नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने किया। मुंबई में और उपनगरों में आज लगातार 5वें दिन बारिश का दौर जारी है। उपनगरीय रेल सेवाएं लगभग 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं, जबकि सड़क यातायात सामान्य बना हुआ है। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली सभी बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिससे जलाशयों का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और अंत में खेल समाचार में, फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय में के बाद 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में मिस्र से भिड़ने का रास्ता साफ कर लिया है। राउंड ऑफ 16 में आज कनाडा का मुकाबला मोरक्को से होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, वादे के मुताबिक हाजिर हूँ मैं आपके साथ कार्यक्रम म्यूजिक कैफे को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, बारिश का मौसम तो है, लेकिन बारिश के साथ गीतों की बौछार तो यहाँ लगी ही रहती है ना। तो आज मैं कुछ ऐसे ही गीत लेके आई हूँ जिनमें गीतों का जिक्र है, और ये वही गीत है। जी हाँ, आप सुनिए इस गीत को। ये कौन सा गीत है?

या तो कहिए, गीत कैसा लगा आपको? ये आपने शायद कम ही सुना हुआ होगा, जयदेव का संगीत था इस गीत में, किशोर कुमार की आवाज। और आप अटकलें लगाइए कि पर्दे पे कौन था इस गीत में। जी हाँ, तब तक हम आपको सुनाते हैं एक और गीत, ये भी किशोर कुमार की आवाज में, और इसमें संगीतकार अलग हैं और इसमें भी गीतों की ही बात हो रही है। कौन किस तरह का गीत सुना रहा है और क्यों सुना रहा है?

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ, ये तबला तरंग आपने सुना, और इससे पहले जो आपने गीत जिसको सुना उसका अंदाज़ा है कि कौन सी फिल्म का गीत है। जी हाँ, अक्सर फिल्म कलाकार का जो गीत बजता है वो है नीले नीले अंबर पर, लेकिन ये भी गीत जो है वो फिल्म कलाकार का ही गीत है। और जिनको थोड़ी बहुत समझ होगी शास्त्रीय संगीत की, उन्होंने शायद राग पहचान लिया होगा। जी हाँ, माल्कोस पर आधारित ये खूबसूरत सा गीत, जहां पर गीतों की भी बात है और बारिश की भी बात है। बहरहाल, एक और गीत कि कोई कौन सा गीत गाए और सुनाए, ये भी एक पसोपेश, और सुनिए इस गीत को।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026।

यह इस सवालिया गीत का एक उत्तर जो है हमारे श्रोताओं ने, जानकार श्रोताओं ने सुझाया है फिल्म पतिता का गीत। हालांकि पुराना गीत है लेकिन है बड़ा ही खूबसूरत, तलत महमूद साहब की मखमली आवाज में, जिसमें कि वो बताते हैं कि कौन से गीत सबसे मधुर होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा ना, लेकिन सुनते हैं तलत महमूद साहब की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

यार ये खूबसूरत सा गीत मानो सुकून देने वाला, सोचने पे भी मजबूर करने वाला और शायद सच्ची भी बात कहने वाला। ये गीत की जब दिल से आवाज़ निकलती है तभी शायद उसमें एक सच्चाई होती है, गहराई होती है। और तलत महमूद साहब की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म पतिता का ये गीत। अगला जो है थोड़ा सा मानो खुश कर देने वाला गीत, मौसम के सरगम को सुनने वाला। जी हाँ, मौसम का तो आज जिक्र हो ही रहा है और साथ में गीत भी बज रहे हैं, तो जब दोनों एक साथ हो जाए तो फिर क्या ही बात है।

गीतों को सुनकर वाकई में ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति और संगीत जो है बहुत उनमें जुड़ाव है, घनिष्ठ संबंध है उन दोनों में। बहरहाल, एक अलग आवाज, एक अलग अंदाज, जो फिर से प्यार का ही इकरार करने वाला गीत है और बयां करता है दिल के हाल को गीतों के माध्यम से।

म्यूजिक कैफे में बस अब शायद दो ही गीत बच पाएंगे। ये है घड़ी का इशारा और अगला जो कार्यक्रम होता है वो होता है हिट एंड हॉट, जिसका हम और आप दोनों बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि आप ही के सुझाए हुए गीत हम बजाते हैं। और जैसे कि हमारे पुराने श्रोता जानते होंगे, लेकिन सभी की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8657661071, यानी 8657661071। साथ ही आप हमें स्टूडियो के फोन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। अगर आप मुंबई के बाहर से फोन कर रहे हो तो एसटीडी कोड 022 यानी 022 अवश्य लगाएं। नंबर इस प्रकार है 4515-4132 और 4515-4133 यानी 4515-4132 और 4515-4133। बहरहाल एक ऐसा गीत जो शायद कम सुना हुआ होगा जो संगीत की उत्पत्ति की ही बात कहता है, तो लीजिए सुनिए इस नायाब से गीत को कुछ कम सुना। और मैं जाते जाते ये भी बताना चाहूंगी कि आज महान गीतकार और कवि पंडित भरत व्यास की याद का दिन है, तो आखिरी गीत जो है मैं उन्हीं का सुनवाऊंगी म्यूजिक कैफे में। फिल्म का नाम दो आंखें 12 हाथ। तो बहरहाल सुनिए फिल्म अस्तित्व का ये गीत।

हाँ, ये है अमर्षभ पंडित भरत व्यास के, जिनकी आज पुण्य तिथि है। और कितने महान लोग हैं इस गीत के साथ जुड़े, वसंत देसाई संगीतकार, पंडित भरत व्यास और वी शांताराम की ये फिल्म गीत दो आंखें 12 हाथ। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, मराठी समाज

जी हाँ, कार्यक्रम है हिट एंड हॉट, जहाँ पर आप ही की फरमाइशी गीत सुनवाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी जगन्नाथ केदार जी का, जो खंडाला के ब्लाइंड होम से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और दरख्वास्त की, और इसलिए उन्हीं की पसंद के गीत के साथ मैं आज शुरू कर रही हूँ हिट एंड हॉट कार्यक्रम। ये सुनना चाहते हैं बरसात की रात, यानी पुरानी वाली, उसका ये मधुर गीत। तो लीजिए जगन्नाथ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सुन रहे होंगे।

पर जहां बाहर बौछार हो रही है स्टूडियो के, वहीं पर यहाँ फरमाइशों की बौछार हो रही है गीतों के बौछार के साथ साथ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि कौन सा बजाऊं कौन सा ना बजाऊं, तो मुमकिन है कि गाना पूरा ना बज पाए अगर मुझे ज्यादा फरमाइशी गीतों को शामिल करना है, तो आप बुरा ना माने। और जिन्होंने पहली दरख्वास्त की, मैं कोशिश करूंगी उन गीतों को शामिल करने की, बाकी नाराज ना हो। बहरहाल ये है विजेंद्र घाटोल जी की पसंद, या कोला से हैं हमारे नियमित श्रोता, ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म स्टाइल का गीत बिल्कुल अलग अंदाज, जो आपने बरसात की रात का ये गीत सुना उससे बिल्कुल हटकर अंदाज। तो लीजिए सुनिए विजेंद्र जी आपकी पसंद का ये गीत।

जी हाँ, अगली जो पसंद है वो है पंकज जमोर जी की, अमरावती महाराष्ट्र से। और आज चूंकि श्रद्धा पंडित जी का जन्मदिन है, हमारी ओर से भी पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और ये फिल्म संघर्ष का गीत है जो ये सुनना चाह रहे हैं, जिसमें सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाजें हैं।

अगली जो पेशकश होगी वो होगी बिल्कुल, मतलब मान के चलिए कि आजादी जब हमें मिली उसके आसपास की फिल्म का एक गीत जो फिरोज सिंगरपुरिया जी ने जिसकी फरमाइश भेजी है, और आज ऐसा लग रहा है नए और पुराने के बीच मानो एक अद्भुत सी जुगलबंदी। तो नौशाद साहब का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम दुलारी।

0: या जो अगली पेशकश है वो है फिल्म समझौता से गीत, और हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे जो एक श्रोता हैं उन्होंने हमें एक नए श्रोता से जोड़ दिया है जो कि डोडा जिला जम्मू कश्मीर से हमें फोन कर रहे हैं पहली बार। इनका नाम है पुष्कर नाथ शर्मा जी। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारा बड़ी देर तक और दूर तक साथ देंगे। और उन्होंने एक गाना भी इसी तरह का सुझाया, क्योंकि पहली बार वो हमसे जुड़े हैं तो कहते हैं बड़ी दूर से आए हैं, फिल्म समझौता का ये गीत। तो पुष्कर जी, स्वागत है आपका और आपके लिए ये गीत।
1: बड़ी दूर से

मुझे अगली प्रस्तुति होगी शुभ लक्ष्मी मस्ताकर की पसंद का ये गीत। इन्होंने भी एक बहुत पुराने और बेहद खूबसूरत गीत की फरमाइश की है, बैजू बावरा फिल्म का नाम, नौशाद का फिर से संगीत, और ये है बचपन की मोहब्बत को। और अगर आपने गौर किया होगा कि बैजू बावरा के कई सारे गीतों में ओजी ओ वाली जो आवाज़ है वो कई गीतों में शामिल किया गया है, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसा है, क्योंकि वो एक दूसरे को अमूमन इसी तरह से बुलाते हैं, तो कई सारे गीतों में वो होगा। और मेरा अनुमान है कि शायद इस गीत में भी ऐसा ही कुछ है।

जी आप सुन रहे हैं यार एफएम रेनबो यानी आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 107.1 पर, न्यूज ऑन एयर ऐप और पर भी यह उपलब्ध है। और अब जो है शेष गीत हिट एंड हॉट कार्यक्रम के, अगला जो गीत बजेगा वो बजेगा श्रेया घोषाल की आवाज में। पसंद करने वाली हैं संपदा जी वालकेश्वर मुंबई से, और लीजिए संपदा जी आपकी पसंद का ये गीत।

जी, जैसे कि मैंने जिक्र किया, आज फरमाइशों की भी बौछार हो रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ सबकी फरमाइशों को शामिल करने की, तो इसीलिए गीत पूरे ना बज पाएंगे। बहरहाल चलते हैं अगली पसंद की ओर। ये है चेतन कुमार जी की पसंद, ये हमें लिख रहे हैं गया बिहार से, और ये सुनना चाह रहे हैं फिल्म खूबसूरत, यानी पुरानी वाली खूबसूरत रेखा वाली, और इसका ये प्यारा सा गीत जो दो बहनों की नोक झोंक को दर्शाता है। तो लीजिए चेतन जी, आपकी पसंद का ये गीत।

अगली पसंद है प्रकाश शिंदे जी की, और जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं, वो ढूंढ के लाते हैं ऐसी फिल्म जो आज ही की तारीख पर रिलीज हुई होती है। और ये आज लाए हैं जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत, क्योंकि ये 4 जुलाई 2008 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। ये अदिति का जिक्र करता हुआ तो शायद आप समझ ही गए होंगे कौन सा गीत है।

अगली जो प्रस्तुति है वो है राकेश माथुर जी की पुणे से पसंद की हुई प्रस्तुति। जी हाँ, फिल्म परख का ये गीत और मौसम के अनुरूप उन्होंने बहुत सुंदर गीत सुझाया है। और गौर करिएगा कि सनल चौधरी ने इस गीत में संचारी का प्रयोग किया, यानी धुन अचानक बदल जाती है दूसरे पहले अंतरे के बाद, और दूसरे अंतरे से पहले कुछ अधिक पंक्तियां जोड़ दी जाती हैं, इसे संचारी कहते हैं। इसका जरूर इसकी ओर ध्यान दीजिएगा। तो लीजिए राकेश जी, आपकी पसंद पे हम भी मजा लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का।

जी उम्मीद करती हूँ आपने उस संचारी पर ध्यान दिया होगा। बहरहाल चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि है संदीप कुमार जी से। ये जालंधर के रहने वाले हैं और इन्होंने और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने ये फरमाइश भेजी है। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। तो लीजिए संदीप जी, आपकी पसंद का ये गीत।

क्या आपने गौर किया होगा, कई साथियों ने फरमाइशी गीत भेजे हैं लेकिन हम शामिल नहीं कर पाए क्योंकि फरमाइशों की संख्या आज बहुत ज्यादा थी, बौछार जैसी ही थी। लेकिन मैं नाम जरूर पढ़े देती हूँ जिनके गीत शामिल नहीं हो पाए। अभिजीत गवहनकर जी, सुशील यादव जी, विजेंद्र घाटोल जी का तो गीत शामिल हो गया था लेकिन उनके परिवार वालों ने भी अलग फरमाइश भेजी जो बज नहीं पाया। साथ ही साथ श्याम सुंदर तंगसाली जी, मुकेश कश्यप जी, दिलेश वंजारी जी भंडारा से, और प्रमोद चिंचोड़कर जी, अशोक पाटिल जी, राजेंद्र परमार जी, अनिल कांबड़े जी हिंगोली से, अरुणा जी खार से, हितेंद्र दास जी, तो कई सारे, अजय साखरे जी, दिग्दर्शन और कविता, राम प्रजापति जी, हरजिंदर छिंदा जसवीर जी, दीपा पालकर जी, गजानन मोरेश्राव पाटिल उलेल मान वसई से, तो आपने समझ ही लिया होगा, विजय महोबिया जी, रजनीकांत पाटिल वधावन, तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी फरमाइशें आई। इनमें से छांटना और उस तरह से बिठाना एक घंटे से कम के समय में थोड़ा सा मुश्किल था, तो माफी चाहूंगी जिनके शामिल नहीं हो पाए। लेकिन आज के गीत सभी अच्छे थे, उम्मीद करती हूँ आप सबको मजा आया होगा जितना मुझे सुनवाने में उतना आपको सुनने में। तो आपका वीकेंड जो है खुशगवार गुजरे इसी उम्मीद के साथ। मैं आर्य अनीता आपसे विदा लेती हूँ, खुश रहिए और मस्त रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 बजे होंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, क्रमशः अंग्रेजी और हिंदी में, उसके बाद होगा मराठी प्रसारण। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक

0: की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है।

0: और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत

0: जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: अरिजीत सिंह अनंतरा मित्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी दिलवाले। आप ट्यून्ड इन है ऑन FM रेनबो 107.1 पर। शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है लव यू जिंदगी और मेरा नाम है सोनम। पांच से आठ रहूंगी आपके साथ इतनी गहरी भरी बारिश में। समझ नहीं आ रहा है बाहर क्या हो रहा है। ऑफकोर्स बारिश तो हो ही रही है सब जगह पर मुंबई में, पर आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आप कहाँ से मुझे मैसेज कर रहे हैं ये मैं जानना चाहती हूँ, और आपके शहर का हाल क्या है ये भी जानना चाहती हूँ। है हम साथ में। ऑफकोर्स करंटली तो स्टूडियो के बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है, पर अब जब मैं अंदर हूँ तो एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए आज लव यू जिंदगी में ऐसे ही गाने प्ले होने वाले हैं, क्योंकि सैटरडे इवनिंग है तो थोड़ा सा मस्ती मजा कर लेते हैं। और इसीलिए जो अगला गाना है प्ले करने वाली हूँ, इस गाने को गाया है नीरज श्रीधर ने विद सुनिधि चौहान। दिस इज फ्रॉम द मूवी लव आजकल। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: आणि एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्युझिकली युअर्स.
1: आकाशवाणीच्या कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी अंतर्गत कार्यक्रम निर्माते आणि निर्मिती संस्थांकडून सर्जनशील आणि दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. अधिक माहितीसाठी https://prasarbharati.gov.in/NIPP या वेबसाईटला भेट द्यावी. शेवटची तारीख आहे 31 जुलै 2026.
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी.
2: ओहो,
3: यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
2: हाँ भाई,
3: ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स.
4: 5:21 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी. इस छोटे से स्पॉट ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो एंड प्रीति पिंकी की प्रीति की आवाज़ में ये गाना. मूवी का नाम था मुझे कुछ कहना है और मैं तो आपके साथ शो पर कह ही रही हूँ और कहती जा रही हूँ और कहती जाऊँगी 8 बजे तक, क्योंकि काम है मेरा और आपका साथ देना है पूरा.

3 घंटे। और मैंने आपसे पूछा था कि आप शहर के किस कोने से बात कर रहे हैं, और बहुत मैसेजेस आए हैं, कोई विद्या विहार से मैसेज कर रहा है, कोई विक्रोली से मैसेज कर रहे हैं, कोई माहिम से मैसेज कर रहा है, पंकज अरविंद कुलकर्णी, दीपा पालकर, देन विजेंद्र घटोल का मैसेज आया है, श्रीधरन बालचंद्रन ने हमें मैसेज किया है, एंड बहुत सारे लोग और भी हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं। और आपके वहाँ पे बारिश का क्या हाल है ये जानना है, क्योंकि आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आई एम होपिंग कि आप सारे सेफ हैं और शो सुन रहे हैं, शो का मजा उठा रहे हैं और घर में हैं और काफ़ी सुरक्षित है, आई होप सो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आसपास अगर किसी को थोड़ी सी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप ट्राई करें उनकी मदद करने के लिए, एंड ख़ास करके जो रस्ते पर जो जानवर होते हैं या जो पंछियाँ या जो पक्षी होते हैं, आप उनकी भी अगर थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो वो भी काफ़ी ठीक रहेगा सबके लिए। और फिलहाल तो जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ मैं, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल एंड ए आर रहमान की आवाज़ में ये गाना फ्रॉम द मूवी युवराज। आपको कहीं नहीं

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 5:38 हो रहे हैं, आप ट्यून रहे और एफएम रेनबो 107.1 पर अलका याग्निक कमाल खान की आवाज़ में आप सुन रहे थे मैंने प्यार क्यों किया ऐसे वाला गाना एंड बरसाती गाना बरसात में आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे जगहों में से. आप घर में हैं, सेफ है, दैट इज़ अ गुड थिंग, पर आई एम होपिंग कि आपके आसपास जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी सेफ है. फिलहाल तो यहाँ पे लवी जिंदगी में हम प्ले कर रहे हैं कुछ ऐसे ही टेनिंग गाने क्योंकि आज सैटरडे इवनिंग है एंड सैटरडे इवनिंग और फ्राइडे इवनिंग यूजुअली हम हैप्पी सॉन्ग्स, हम पार्टी सॉन्ग्स ऐसे गाने प्ले करते हैं और इसीलिए जो अगला गाना है वो भी प्ले इसी माहौल को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ. सोनू निगम की आवाज़ में है ये गाना, दिस इज फ्रॉम द मूवी चॉकलेट, और इसके बाद शफकत अमानत अली, विशाल शेखर, क्लिंटन सरेजो की आवाज़ में भी एक गाना सुनेंगे. और अभी फिलहाल ये दो गाने प्ले होने के पहले एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक आ रहा है आपकी तरफ, इसीलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर क्योंकि एक छोटे से स्पॉट ब्रेक के बाद आ रहे हैं आपके लिए बैक टू बैक गाने और उसके बाद मैं खुद आऊँगी वापस से ऑन एयर आप लोगों से बातें करने. इसीलिए एज आई सेड, आप कहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर.
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स.
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी.
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
0: Aakashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
4: Yeah, wanna feel that? Come on, girl.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 5:50 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। शफकत अमानत अली, विशाल शेखर एंड क्लिंटन सरेजो की आवाज में आप सुन रहे थे रावण से वाला गाना। और हमारा शो लव यू जिंदगी अब बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा और इसके बाद आप सुनेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद शो अंदाजे बयां। अंदाजे बयां में हम प्ले करेंगे कुछ हटके गाने जो कि फिल्मी गाने नहीं होंगे, इंडी पॉप गाने होंगे, नज़में होंगी, कवालियाँ होंगी, गज़ल्स होंगे। ये तो डिपेंड करता है अंदाजे बयां में क्या होने वाला है, पर फिलहाल तो क्योंकि ये शो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, आपके लिए प्ले करने वाली हूँ अगला गाना। दिस इज़ इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, दिल मांगे मोर से है ये ट्रैक। और क्योंकि दिल मांगे मोर, इसीलिए जो उसके बाद वाला गाना है वो भी प्ले होगा, कुणाल गांजावाला और कैरली मोंटेरो की आवाज में। वो गाना कौन सा है और वो कौन सी मूवी से, ये आपको खुद पता चल जाएगा जब आप ट्यून्ड इन रहेंगे इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 6:24 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM Rainbow 107.1 पर अंदाज़े बयां. अभी अभी आप सुन रहे थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में द ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रैक. और अंदाज़े बयां में हम प्ले करते हैं ऐसे गाने जो कि नॉन फिल्मी हैं, जो कि गज़ल्स हो सकते हैं, कवालियां हो सकती है, सूफ़ी गाने हो सकते हैं, इंडी पॉप गाने हो सकते हैं. और इसलिए जो अगला गाना है वो भी प्ले करने वाली हूँ मैं, शुभा मुद्गल की आवाज़ में ये गाना. और परफेक्ट फॉर द वेदर, परफेक्ट फॉर द करंट सिचुएशन. और इसके बाद आप सुनेंगे शामक दावर की आवाज़ में भी एक गाना. वो गाना कौन सा है वो जानने के लिए ट्यून इन रहना है आपको इसी रेडियो स्टेशन पर.

0: Ronnie FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 6:40 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है अंदाजे बयां। अभी अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज में पल का जो एल्बम है उसका ये ट्रैक। और अंदाजे बयां, जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसा शो है जहां पर मैं प्ले करती हूँ कुछ हटके गाने जो आप रेगुलरली नहीं सुनते हैं। एंड आई एम श्योर ये गाने आप बहुत अरसे के बाद सुन रहे होंगे, स्पेशली इसके पहले वाला जो गाना था शामक दावर की आवाज में। ये जो गाना था ये आया था 1997 में एंड उन्होंने एक एल्बम निकाला था एंड वेरी रेयर सॉन्ग्स बट वेरी हिट सॉन्ग्स। और ऐसे गाने ही हम प्ले कर रहे हैं आज इस आवर में। जो अगला गाना है वो भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इसे गाया है फाल्गुनी पाठक ने एंड ये गाना भी काफ़ी फेमस हुआ था। इनफैक्ट हर नवरात्रि में एक वर्जन तो इसका होता ही है प्ले, बट अगेन ओरिजिनल ट्रैक प्ले कर रही हूँ आपके लिए। और उसके बाद आप सुनेंगे नाजिया हसन की आवाज़ में भी एक गाना, वो गाना कौन सा है आप गेस कर चुके होंगे, बट फिर भी सुनने के लिए आपको ट्यून्ड इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 6:53 हो रहे हैं, आप ट्यून इन हैं ऑन FM रेनबो 107.1 पर। हमारा शो चल रहा है अंदाजे बयां, और अभी अभी आप सुन रहे थे धूम तारा सुचित्र कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। इफ़ यू आर वंडरिंग वो कौन है, तो अगर आपने मूवी देखी है कभी हाँ कभी ना, वो मूवी में जो एक्ट्रेस थी उन्होंने ये इंडी पॉप एल्बम रिलीज़ किया था अगेन इन द 90s। एंड इस वक्त पे आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस कुछ ना कुछ फीचर्स कर ही रहे थे इंडी पॉप एल्बम्स में, स्पेशली अदनान सामी के एल्बम्स में। पर फिलहाल जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अदनान सामी का गाया हुआ नहीं है, वो है दलेर मेहंदी का गाया हुआ। एंड ये एक ट्रैक है जो मैंने कुछ हफ्ते पहले भी प्ले किया था, एंड बहुत सारे लोगों ने इस ट्रैक को सराहा था, तो फिर से ये गाना मैं प्ले कर रही हूँ आफ्टर अ लॉट ऑफ वीक्स। और इसके बाद 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार, एंड उसके बाद शो हम तुम, जहां पर मैं प्ले करती हूँ आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। तो जो गाने आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि वो उन मूवी से हो जो कि साल 2000 के बाद रिलीज हुई हो। बट फिलहाल इट इज

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 7:16 हो रहे हैं, आप ट्यून इन हैं ऑन FM रेनबो 107.1 पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है हम तुम। अभी अभी आप सुन रहे थे झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम मेघा। एंड हम बढ़ते आगे हमारे शो में, जो अगला गाना है इट इज़ अ रिक्वेस्ट सुनिधि चौहान की आवाज़ में है गाना। दिस इज फ्रॉम द मूवी चमेली। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम अजय सखारे। एंड इसके बाद आप सुनेंगे दीपा पालकर की रिक्वेस्ट का ट्रैक। और ये दोनों गाने कौन से हैं ये जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर। एंड एट द सेम टाइम उसके बाद प्ले होने वाले हैं आप सबके रिक्वेस्ट्स, यानी कि विजेंद्र घटोल की रिक्वेस्ट भी प्ले होने वाली है उसके बाद। और एट द सेम टाइम प्रणव शिंदे का हमें मैसेज आया है, वो गाने भी हम प्ले करने वाले हैं। जो मैसेज आया है फ्रॉम हीरामणि वर्मा, वो हम ट्राई करेंगे प्ले करने का। बट जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वक्त आगे बढ़ रहा है, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड प्ले द नेक्स्ट ट्रैक। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 7:25 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है हम तुम, और अभी अभी आप सुन रहे थे के एन पलक मुछाल की आवाज में एक था टाइगर्स ये ट्रैक। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम दीपा पालकर। एंड हम बढ़ते हैं आगे हमारे शो में। जो अगला ट्रैक है वो मैं प्ले करने वाली हूँ फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस गाने को गाया है द मिथराज ने। एंड इसके बाद एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक आएगा एंड उसके बाद आप सुनेंगे रिक्वेस्टेड गाने। सो हमें मैसेजेस आए हैं फ्रॉम पंकज मोहोड, सुशील यादव, रेनू यादव, कीर्तन पुरी गोस्वामी, ज्योति घटोल, देन वी हैव मैसेजेस फ्रॉम विक्रम आठवले, प्रणव शिंदे, अरविंद कुलकर्णी। तो आप सबके रिक्वेस्ट, हितेंद्र दास ने भी मैसेज किया है, फिरोज सिगनपुरिया ने भी मैसेज किया है, आप सबके रिक्वेस्ट प्ले होंगे इस आवर में। बट फिलहाल जैसे मैंने कहा, एक छोटे से गाने के बाद आप सुनने वाले हैं स्पॉट ब्रेक एंड उसके बाद कुछ बैक टू बैक गाने। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास

0: उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समा

समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

रात के 11 बज चुके हैं, सुनिए अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का समापन हो गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में आज तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्रवाई का हिस्सा बताया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

दुआ सलाम ज़रूरी है, बातों का सिलसिला शुरू होता है। ज़िंदगी में रंग भरते हैं, वक्त हसीन होता है।

रिश्तों को वक्त देना जरूरी है, जानना समझना जरूरी है, कहना सुनना जरूरी है, वरना खाली जगहों को गलत फहमियाँ ठिकाना बना लेती हैं और चुपके चुपके पढ़ने के अंदाज का तो कहना ही क्या।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। रंगे महफिल सुन रहे हैं आप नविता के साथ। जिंदगी को समझना है तो इश्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी प्रेम की कहानी है।

सांस का हर रंग मोहब्बत का रंग है। क्योंकि जब आप मोहब्बत में होते हैं तो जिंदगी सबसे खूबसूरत होती है।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे छूकर नहीं देखा।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मोहब्बत मिली तो नींद भी अपनी न रही, मोहब्बत मिली तो नींद भी अपनी न रही, गुमनाम जिंदगी थी तो कितना सुकून था। रंगे महफिल सुन रहे हैं आप नविता के साथ।

रिश्तों में गलतफहमियां जगह बना लें तो दिल टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, बेवफाई का इल्जाम लगता है, पर गम तो

0: छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द आते हैं।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: 1 जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM Rainbow के साथ, दिल से दिल तक।

आइए सुनते हैं FM मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के समग्र प्रबंधन और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्रवाई का हिस्सा बताया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 का पहला मैच टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा और मोरक्को के बीच जारी। और ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 12:03 और 16 सेकंड का, और श्रोताओं ये समय है कार्यक्रम जीरो आर शो का।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आकाशवाणी
1: 12:35 और 50 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल कार्यक्रम जीरो आर शो।

आइए सुनते हैं एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी गरिमा गुप्ता ने कहा कि राज्य की मतदाता सूची में किसी भी विदेशी नागरिक के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्यवाही का हिस्सा बताया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और समय रात्रि के 1 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आय हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसठ में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लंबी दूरी की कार्यवाही का हिस्सा बताया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में खेली जा रही 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से रेनबो चैनल एफएम रेनबो और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 2:58 हुए हैं। ठीक 3 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: વાણી આકાશવાણી
1: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त 2:59 और 50 सेकंड हुए हैं। 3 बजे प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटस्टर्न सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार यात्रा तेहरान से शुरू हुई। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एक और अन्य मुकाबले में पेराग्वे और फ्रांस के बीच मैच जारी। 5 मैचों के T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से एफएम रेनबो और समय रात्रि के 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज़।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

ये भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का हुआ समापन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 231 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बैंक

धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी महाराष्ट्र और गुजरात के कई स्थानों पर की गई। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार यात्रा तेहरान से शुरू हुई। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई नदियां उफान पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया और ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।

आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 4:03 और 27 सेकंड का, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारे गामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: रेडवाणी आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। सुबह के 4:25 और 18 सेकंड कार्यक्रम सारेगामा।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

वाणी आकाशवाणी। सुबह के 4:36 और 57 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल कार्यक्रम सारे गामा।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।